साहेबान कदरदान मेहरबान दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही है आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा।

0: आमिर खान और काजोल की फिल्म फना, शान एंड कैलाश खेर ऑन द वोकल्स। चांद सिफारिश जो करता हमारी, देता वो तुझको बता। इसे आप सुन रहे हैं सनराइज पर आज थर्सडे की सुबह शबनम साही के साथ। गुड मॉर्निंग
1: लिसनर्स चॉइस ब्रॉट टू यू बाय कलर्स टीवी।
0: Seher Beg dares to dream beyond limits, but destiny ties her to Mahid Niazi, a man she never chose. In a world of rules, control and judgment, will her dream survive? Watch Seher Hone Ko Hai Monday to Friday, 9:25 PM, only on Colors TV. The hit of the hour with Jamin Foods. Enjoy the yummiest flavors in potato chips like Mexican chili, masala, tomato and salted. Jamin Foods, the ethnic taste of India. कौशिक जोशी जी कहते हैं, नो मैटर वेयर यू आर इन लाइफ, इफ यू लेट लव एंड काइंडनेस बी योर गाइड, यू विल ऑलवेज फाइंड योर वे। दिस वन फ्रॉम पति पत्नी और वो दो। हमने वहीं लगाया दिल, क्यों लगाया आपने?

मतलब आपने बताया है दरवाजा, डोर स्टेप। चलाए तीर तो किस किस ने लेकिन मेरा कातिल कोई तेरे सिवा नहीं। चलाए तीर तो किस किस ने लेकिन मेरा कातिल कोई तेरे सिवा नहीं। बिछड़ के जान तेरे आस्तान से लगाया जी बहुत पर जी लगा नहीं। 07925 700 272 the number to WhatsApp me on

0: celebrating 36 years of excellence. Sunrise and Music. This is Sunrise with the latest news headlines. Next. Sunrise
1: Radio. Kavita on Sunrise with Sony Max. Attention cricket fans, swap the IPL for a real classic this weekend. For the first time on Sony Max, watch the blockbuster Lagaan starring Aamir Khan this Sunday 3 p.m. on Sony Max.
2: My mom started cooking with Khanam Ki in the 70s. Dal Makhni, butter chicken, these have been my family's favorite dishes. Using Khanam Ki for 3 generations. Khanam Ki, the legacy lives on.
0: Khanam Ki, a brand from SOP International, available at all major supermarkets and your trusted local Asian stores. Wishing everyone Eid Mubarak.
3: माँ के हाथ की चाय हो या दोस्तों के साथ गॉसिप,
4: टेबल पे सिर्फ एक हीरो, जैमिन फूड्स का ऑल न्यू पोटैटो चिप्स,
3: मसालेदार मसाला, टैंगी टोमेटो, सॉल्टेड क्लासिक और थोड़ा स्पाइसी मैक्सिकन चिली फ्लेवर, ऑल इन जैमिन्स पोटैटो चिप्स.
4: जैमिन फूड्स प्रेजेंट्स पोटैटो चिप्स, देसी स्वैग इन एवरी बैग.
5: At TUI, we give you more. More outfit choices, with 20 kilograms of luggage allowance as standard. More hotels, built around what you love, like that swim-up suite. More race you to the bottom, water parks on site. More, ooh, that looks good, food options, from poolside snacks to a la carte dining. Book on app, in-store or online. You book it, TUI sort it. Atoll and APTA protected. T's and C's apply. Selected hotels only. See website for details.
6: अरे मुझे हेल्प कीजिए ना, मुझे कई गिफ्ट्स चाहिए.
7: तो वसीम ज्वेलर्स आए.
6: और शादी की ज्वेलरी भी चाहिए.
7: तो वसीम ज्वेलर्स आए.
6: और हमारे सोने की वैल्यूएशन.
7: तो वसीम ज्वेलर्स आइए, साउथ हॉल में 2 ब्रांचेस के साथ,
2: 90 and 130 द ब्रॉडवे साउथ हॉल. सबसे सोना सदा सोना.
7: वसीम ज्वेलर्स.

0: अरे मुझे हेल्प कीजिए ना, मुझे कई गिफ्ट्स चाहिए।
1: तो वसीम ज्वेलर्स आए,
0: और शादी की ज्वेलरी भी चाहिए।
1: तो वसीम ज्वेलर्स आए,
0: और हमारे सोने की वैल्यूएशन।
1: तो वसीम ज्वेलर्स आइए, साउथ हॉल में दो ब्रांचेस के साथ,
0: 90 and 130 द ब्रॉडवे साउथ हॉल। सबसे सोना सदा सोना
1: वसीम ज्वेलर्स।
2: न तेरे वर्ग आशिक वेख्या, न तेरे वर्गी आशिकी।
0: ARY Films and Salman Iqbal present Love This Song, starring Farhan Saeed and Mamia Shah Jafar, directed by Imran Malik. Love This Song in cinemas this Eid ul Azha, May 27th.
3: Need anything from Tesco? Like half-price Magnum Classic ice cream sticks. Now just £1.75. Down from £3.50.
4: Club card accepted.
3: Because every little helps. Majority of larger stores, pack of three, ends 15th of June. Club card or app required.
0: Din mein bablu, raat mein lalli. Ye kalakar ban gaya hai sabka kaal. Baap ki maut ka badla lene aa gaya hai bablu. देखिए सतरंगी बदले का खेल, स्ट्रीमिंग नाउ ऑन हिंदी।